0: पैसों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: कभी नोटिस किया है आजकल लोग रेडी बहुत होते हैं, फेस वॉश, परफ्यूम, ब्रांडेड क्लॉथ, सब परफेक्ट, पर चेहरे पर वो असली ग्लो होता ही नहीं है, वो मिसिंग होता है। कल एक चाय की टपरी पर अंकल से मिला, सिंपल से कपड़े, पुरानी साइकिल, लेकिन स्माइल, उफ यार, फुल पॉजिटिव वाइब थी उनकी स्माइल। मैंने पूछा, अंकल इतने हंसते कैसे रहते हो यार आप? वो बोले, बेटा टेंशन तो सबके पास है, पर अगर मुस्कान चली गई तो जिंदगी ईएमआई बन जाती है, बस फिर भरते रहिए जिंदगी भर ईएमआई। और सच बोलूं, उस एक लाइन ने ना तो दिमाग हिला दिया था मेरा। आज हम लोग फोटोज में फिल्टर यूज करते हैं, पर असली फिल्टर तो स्माइल है यार। मूड खराब हो, सैलरी लेट हो, ट्रैफिक जाम हो, फिर भी एक छोटी सी स्माइल सामने वाले का दिन बेटर बना सकती है। इसलिए थोड़ा कम गुस्सा, थोड़ा ज्यादा हंसना, क्योंकि मुस्कान की चमकान सिर्फ फेस पर नहीं लाइफ पर भी असर करती है। तो मुस्कान की चमकान बरकरार रखिए।
0: किस्सों का कार
2: विद्यानंद जी, ओरा
3: भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व करायचे आहे तर मग MGM इंस्टिट्यूट ऑफ बायोसायन्स

गर्मी तो आ चुकी है, हम सभी लोग गर्मी से परेशान है, हर दिन बहुत सारी गर्मी हो रही है। यू आर लिस्टिंग MGM 90.8 FM और घर से हम निकलते एकदम तैयार होकर हीरो बनकर, और जब लौटते हैं तो भाई साहब बेकार हाल हो जाता है। और स्किन केयर वो तो भाई पूछो ही मत कितना खराब हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं समर में अपने स्किन केयर के बारे में। तो पहला फायदा, मतलब पहला टिप्स आपको ये है कि पानी ज्यादा पियो। स्किन का असली ग्लो एक्सपेंसिव क्रीम से नहीं हाइड्रेशन से आता है, समझे, इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। सेकंड वन इज सनस्क्रीन लगाओ, बाहर 10 मिनट जाओ या 1 घंटा, सनस्क्रीन बहुत जरूरी है बॉस, वरना टैनिंग फ्री और फ्री में आपको मिलेगी। लाइट फूड खाओ, ज्यादा ऑयली और स्पाइसी खाया तो भाई पिंपल आपके चेहरे पर पार्टी कर लेंगे। फेस वॉश करो बट ओवर मत करो, हर 1 घंटे में मुंह धो गए तो स्किन और ड्राई हो जाएगी, इसलिए फेस वॉश कीजिए लेकिन थोड़ी थोड़ी देरी के बाद। प्रॉपर स्लीप लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, क्योंकि डार्क सर्कल को कोई एसी भी नहीं बचा सकता, इसलिए नींद लेना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेस कम लो, क्योंकि टेंशन फेस पे HD क्वालिटी में दिखता है, तो इस वजह से स्ट्रेस लोगे तो वो टेंशन आपके चेहरे पे दिखेगा और आपका निखार कम हो जाएगा। तो ये बेसिक से कुछ टिप्स है, तो याद रखिएगा इस गर्मी के मौसम में फ्रेश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सुनते रहिए।

0: किसी किसी को आदत होती है बैठे बैठे खो जाने की। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। बड़ी आदत एक बीमारी भी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में हम जान रहे तो इसमें हमें यह पता चला है। तो इस पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगांवकर मैम, साइकोलॉजिस्ट। सो मैम, एक सवाल आपसे यह है कि अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग ना तो बैठे बैठे खो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, या तो फिर कोई बात कर रहा है इंसान और बात करते करते एकदम शांत होता है, उसको थोड़ा आवाज दी, उसको हिलाया तो वो वापस से जगह पर आता है, वरना एक अपने अलग दुनिया में वो चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है?
1: हमको बहुत माइंडफुल रहना होगा और हमको प्रेजेंट टेंस में रहने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम जब ओवरथिंक करते हैं हम उस थॉट्स के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, हम पास्ट में चले जाते हैं, हम किसी और सिटी में पहुँच जाते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी वहाँ पे रहता है। एंड इन अ वे इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि तब हम मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं या और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं और हमारा ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम खो जाते हैं, है ना, टर्न मिस हो जाता है क्योंकि हम थिंकिंग में कहीं और ही थे। तो व्हेनेवर यू नो वी आर ड्राइविंग और वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, हमको थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए हम थोड़ा हॉर्न बजा देंगे कि हम थोड़ा वापस आ जाए, है ना, और या तो कोई काम कर रहे हैं तो हम ना थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, थोड़ा 5 कदम चलेंगे, सो दैट वी कम बैक। फिर हम किसी चीज को, जैसे टेबल है हमारे ऑफिस में, हम उसको छुएंगे टेबल को और हम उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे कि इसका टेक्सचर कैसा है, ये सॉफ्ट है, हार्ड है, ये क्या है, तो ये हमें बैक टू प्रेजेंट मोमेंट लाएगा। सो दीज आर सम यू नो एक्सरसाइजेस जो हम प्रेजेंट टेंस में वापस आने के लिए करेंगे और ये हमको टेम्परेरीली ही वापस लाएंगी। इसीलिए तो हमें माइंडफुल रहना है कि जैसे ही हमारा मन भटक रहा हो तो ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस करके हमको उसे वापस लाना होगा, वरना हम यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे।
0: सो दोस्तों, ये सब बातें याद रखिएगा मैम ने जो बताई, और आपके भी दिमाग में कुछ सवाल होगे रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग या मेंटल हेल्थ तो बेझिझक हमसे आप पूछ सकते हो 9359320080 इस नंबर पर।

let's play the song with your farmaish. You are listening MGM 90.8 FM. All is और इस वक्त ना तो अपने शो में आपके गानों की फरमाइशें पूरी होती है, आज हमारे पास गाने की फरमाइश आई है नीतीश काळे जी की तरफ से। इस गाने

यार ये गाना जिसे सुनकर ना तो दिल धड़क उठता है भाई। बात हो रही है साल 1984 की हिट फिल्म शराबी की। स्क्रीन पर थे अमिताभ बच्चन और जया प्रदा और पीछे बज रहा था बप्पी लहरी का वो जादुई संगीत, किशोर कुमार की भारी आवाज और आशा भोसले की प्यार भरी हरकतें। इस गाने की बात है कुछ निराली थी यार। जब इंतजार की हद पार हो जाती है तो इंसान बस यही कहता है इंतहा हो गई इंतजार की। तो चलिए फिर अपने चाहने वालों के नाम करते हैं ये टाइमलेस क्लासिकल गाना जिसकी फरमाइश की है नीतीश काळे। और हाँ, आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। फरमाइशें बताते रहिए, मुस्कुराते रहिए और

0: जितनी गर्मी बढ़ती है उसके साथ लाइट बिल भी हमारा बढ़ता ही है, क्योंकि लाइट ज्यादा यूज होती है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। सिटी अपडेट में इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि एक दो महीने के अंदर अपने शहर में लाइट्स बहुत ज्यादा यूज हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में अपने शहर में 50 लाख यूनिट बिजली यूज हुई थी और वही अप्रैल में तकरीबन 6 लाख के ऊपर ये नंबरिंग पहुंच गई थी। यानी कि एक महीने में 1% बढ़ोतरी हो गई है। इस प्रत्येक घर अपना कूलर क्यों एसी क्यों फैन 24 तास चालू असतात, कारण की उन्हाळा इतका आहे तर माणूस करणार तर काय, यामुळे ही वीज वाढ सध्या झालेली आहे। आणि आता तर मे महिन्यात चालू आहे आणि इस मे महिने में अभी कैसी गर्मी है तो इसका रिपोर्ट तो मे के एंड में आएगा, लेकिन अप्रैल में 60 लाख यूनिट यूज हुई थी, तो मे महीने में कितनी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जैसे गर्मी बढ़ती है तो लाइट का बिल भी बढ़ता है, क्योंकि बिजली ज्यादा यूज होती है। स्टे ट्यून्ड। करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
2: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
1: ऍडमिशन्स ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404 94299।

0: is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड़ आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा.
2: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ.
1: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान. समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध. आजच भेट द्या
2: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर. अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर. कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688.
3: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं?
4: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
5: ऑटोमेशन के जमाने में एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
4: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
5: MGM University, Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

मैं तेनु समझावा कि ये गाना अभी आप एंजॉय कर रहे थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल जी की आवाज में, और एग्जैक्टली अभी 10:40 का वक्त हो चुका है। एंड आज तो यार वीकेंड का वार शनिवार, और फिर शनिवार के बहुत सारे आपके प्लान्स तो हो गए है ना, कुछ ना कुछ होने भी चाहिए। और कल क्या है पता है, कल है संडे, इसी के साथ कल एक बहुत खास दिन है, वो है मदर्स डे, पता है ना आपको। सो भाई साहब बहन जी, एक आपसे दरख्वास्त यार, कल संडे है, कुछ और कहीं जाने का प्लान मत बनाइए, अपने माँ के साथ ना तो कोई एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर कुछ आज कल का डे सेलिब्रेट कीजिए, और उनको थोड़ा स्पेशल फील करवाइएगा, क्योंकि यार वही तो एक शख्स है जिनकी वजह से हम दुनिया में है, और वो ना होना तो दुनिया अधूरी है। और इसी के साथ मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ, क्या है ना हमारे दिल में बहुत सारी बातें होती है, बहुत कुछ कहना होता है माँ को, लेकिन वो रह जाता है यार, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के वो नहीं कह पाते, कहना होता है लेकिन बातों बातों में कुछ काम के सिलसिले में रह जाता है, और फिर वो बस क्या कभी दिल की बात करते ही नहीं हम, सच कहूँ तो एक मौका मैं आपको दे रहा हूँ, अगर कुछ आपको आपकी मम्मी को दिल की बात कहनी हो, थैंक यू कहना हो, कुछ मैसेज पहुंचाना हो, तो आप बिंदास कॉल कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझको, और रेडियो के जरिए कल का डे उनके लिए बहुत स्पेशल फील करवाइएगा। और इसी के साथ मम्मी के लिए आप कुछ गाना डेडिकेट करना चाहते हो, कुछ स्पेशल फील करवाना चाहते हो, तो वो भी फरमाइश आप हम तक पहुंचा सकते हो आरजी अदनान इस इंस्टा पेज पर डीएम करके, या तो फिर कॉल करके, नंबर याद रखिए 9359320080। और बाकी कल का मदर्स डे बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कीजिएगा, एंड कॉल और मैसेज याद से कीजिए, और बाकी तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM पर आरजी अदनान को।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
5: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी एंड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
6: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

इंजिनियरिंग, जिथे शिकल म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं. सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शनिवार की ये प्यारी सी शाम थोड़ा आराम, थोड़ी मुस्कान और ढेर सारी अच्छी वाइब्स लेकर आई है। पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद आज का वक्त सिर्फ आपका है, तो चाहे आप घर पर चाय की चुस्कियां ले रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो या फिर अकेले में मन पसंदीदा गाने सुन रहे हो, हम हैं आपके साथ इस शाम को और भी खास बनाने के लिए। कहते हैं ना, शामें सिर्फ ढलती नहीं, कुछ खूबसूरत यादें भी बना जाती है। तो आज की शाम हैप्पी सैटरडे इवनिंग, थोड़ा सा संगीत सुन लेते हैं, थोड़ी बातें, ढेर सारी पॉजिटिविटी के नाम करते हैं। आने वाले अगले दो घंटे

में होंगे आपके मन पसंदीदा गाने और कुछ दिल को छू लेने वाली बातें और ऐसी बातें जो आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आएगी। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, स्ट्रेस को थोड़ा साइड में रखिए और एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत शाम को ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, चॉकलेट का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर चॉकलेट सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत भी देता है। जी हाँ, आज हम बात करते हैं डार्क चॉकलेट की। डार्क चॉकलेट सिर्फ टेस्टी नहीं होता बल्कि अगर सही मात्रा में खाया जाए तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे दिल को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। कई लोग कहते हैं कि डार्क चॉकलेट मूड भी अच्छा करने में मदद करता है और शायद इसीलिए स्ट्रेस वाले दिन एक छोटा सा पीस भी दिल को थोड़ा हैप्पी बना देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरी चॉकलेट बार खत्म कर दी जाए। हर अच्छी चीज की तरह इसमें भी बैलेंस बहुत जरूरी है। थोड़ी सी डार्क चॉकलेट, थोड़ा सा सेल्फ केयर, थोड़ा मिल्क, दोनों मिल जाए तो दिन और भी बेहतर बनने लगता है। वैसे सोचिए कितनी मजेदार बात है ना, जिस चीज को हम बचपन से सिर्फ स्वीट ट्रीट कहते हैं या समझते हैं, वही चीज अब हेल्दी टिप्स में भी शामिल हो गई है। तो अगली बार जब आपका मूड थोड़ा लो हो या काम के बीच थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो एक छोटी सी डार्क चॉकलेट के साथ खुद को थोड़ा ट्रीट जरूर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजे मनाड़ी पॉइंट एफएम, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी सक्सेस, लेकिन कभी कभी असली खुशी उन छोटी छोटी बातों में छुपी होती है जिन्हें हम रोज महसूस तो करते हैं पर ध्यान नहीं देते। सुबह की पहली चाय, किसी अपने का अचानक आया मैसेज, लंबे दिन के बाद थोड़ा आराम या फिर आपका पसंदीदा गाना, ये छोटी छोटी खुशियां ही तो है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। कभी गौर किया है, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, रास्ते में किसी बच्चे की मुस्कान या बिना किसी वजह के दिल से निकली हुई हंसी, ये पल बहुत छोटे होते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन शायद खुश रहना ही चीजों को थोड़ा बेहतर बना देता है। तो आज इस शाम थोड़ा रुकिए, थोड़ा मुस्कुराइए और अपनी जिंदगी की उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए जो हर दिन आपके आसपास मौजूद है, क्योंकि खुशी हमेशा बड़ी वजहों से नहीं आती। कभी कभी एक प्यारा सा गाना, एक अच्छी याद या किसी अपने की आवाज भी दिल को खुश कर देती है। आप सुन रहे हैं MG 90.8 FM और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। स्टे ट्यून्ड।

सुन रहे हैं आपका मन पसंदीदा शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो एहसास होते हैं जो दिल को नई उम्मीद, नई ऊर्जा और जिंदगी फिर से खुलकर जीने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसा ही एक खूबसूरत गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने के बोल इतने आसान है और इतने सच्चे और इतने पॉजिटिव है कि हर बार सुनने पर लगता है जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही हो। आज फिर जीने की तमन्ना है यानी बीते बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का एहसास। कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें आती है, कुछ बातें दिल को दुखा देती है, लेकिन फिर कोई गाना, कोई याद, कोई छोटी सी खुशी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी अभी भी बहुत खूबसूरत है। इस गीत की सबसे खास बात यह है कि हमें आज में जीना सिखाता है, खुलकर हंसना, अपने सपनों को फिर से मौका देना और खुद से कहना हाँ जिंदगी अभी बाकी है। शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये गाना लोगों के दिल में उतना ही ताज़ा है। इसकी धुन हो, बोल हो या एहसास, सब कुछ दिल को हल्का और खुश कर देता है। तो अगर आपका दिन भी थोड़ा सा भारी लगे या मन को थोड़ी पॉजिटिविटी चाहिए हो तो ये गाना जरूर सुनिए, क्योंकि कुछ गाने सच में दिल को छू जाते हैं। सुनते रहिए एमजीएम नाड़ी पॉइंट 88.5, साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। वेल, जिंदगी हर दिन हमें छोटे बड़े फैसलों के सामने खड़ा कर देती है, कभी करियर का फैसला, कभी रिश्तों का, तो कभी बस खुद के लिए सही रास्ता चुनने का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी के सबसे अहम फैसले आपको खुद लेने चाहिए, क्योंकि जब हम खुद डिसीजन लेते हैं तब हमें अपनी ताकत और अपनी पहचान दोनों समझ में आती है। कई बार डर लगता है अगर गलती हो गई तो, लेकिन सच कहे तो गलत फैसले भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और यही सीख हमें आगे मजबूत बनाती है। दूसरों की सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन हर बार अपनी खुशी, अपने सपने और अपनी सोच को नज़रअंदाज करना सही नहीं, क्योंकि आखिर में जिंदगी आपकी है तो फैसले भी आपके होने चाहिए। एक अच्छा डिसीजन मेकर वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा रखे, जल्दबाजी से बचे और दिल के साथ दिमाग की भी सुने। कभी कभी सही फैसला तुरंत खुशी नहीं देता, लेकिन आगे चलकर वही फैसला जिंदगी को बेहतर बना देता है। तो आज अगर आप किसी मोड़ पर खड़े हैं और कोई फैसला लेने से डर रहे हैं, तो खुद पर थोड़ा भरोसा रखिए, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं MGM 90.8 FM, साथ हैं तो बात है।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सिर्फ टैलेंट, सिर्फ लक? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाले लोग वही नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, जो गिरने के डर से रुकते नहीं। कई बार हम कुछ नया करने से इसलिए डर जाते हैं कहीं फेल ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, अगर सब गलत हो गया तो क्या। लेकिन सच तो ये है कि डर के पीछे अक्सर सबसे बड़ा मौका छुपा होता है। अगर बच्चा चलना सीखते वक्त गिरने से डर जाता है तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। याद रखिए, डेयर टू डू नॉट टू फियर द फॉल, यानी कोशिश करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में स्ट्रगल्स भी होते हैं और फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन होती है, उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तो अगर आज आप कोई नया सपना शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं या बस जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि उड़ान वही भरते हैं जो गिरने से कभी डरते नहीं। स्टे ट्यून्ड एंड जिम नाड़ी पॉइंट फिल्म साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। तो दोस्तों, आखिरकार वीकेंड आ ही गया। पूरा हफ्ता काम, पढ़ाई, मीटिंग्स और जिम्मेदारियों में निकल जाता है, वही फिर आता है ये दो दिन जो सिर्फ आपके होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं वीकेंड में ये करेंगे वो करेंगे और देखते ही देखते संडे रात आ जाती है। इसलिए इस बार अपने वीकेंड को थोड़ा प्लान कीजिए, बहुत बड़ा प्लान नहीं, बस छोटे छोटे मोमेंट्स अपने लिए तय कीजिए। अगर लंबे समय से दोस्तों से बात नहीं हुई है तो एक कॉल कर लीजिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, किसी मन पसंदीदा कैफे में जाइए या फिर घर पर आराम से अपनी फेवरेट मूवी देख लीजिए। और हाँ, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी रखिए, क्योंकि वीकेंड सिर्फ काम खत्म करने के लिए नहीं होता, खुद को रिचार्ज करने के लिए भी होता है। कभी देर तक सोना भी ज़रूरी है, कभी बिना वजह गाने सुनना भी ज़रूरी है और कभी बस चुपचाप बैठ कर मन को आराम देना भी ज़रूरी है। याद रखिए, अच्छा वीकेंड वही होता है जिसके बाद मंडे थोड़ा सा आसान लगे। सो इस वीकेंड स्ट्रेस को थोड़ा ब्रेक दीजिए, मोबाइल नोटिफिकेशन से दूर रहिए और उन चीजों के लिए समय निकालिए जो आपको खुशी देती है। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजी मनाड़ी पॉइंट एफएम, साथ है तो बात है।

सुन रहे थे आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। अब वक्त आ गया है जब आज की इस खूबसूरत मुलाकात को यही थोड़ा सा विराम देने का। उम्मीद है आज का ये सफर, ये बातें, ये गाने और छोटी छोटी मुस्कानें आपके दिन को थोड़ा और बेहतर बना पाई होगी। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा आराम करने का, अपने मन को शांत करने का और उन खूबसूरत पलों को याद करने का जिन्होंने आज आपके चेहरे पर मुस्कान लाई है। अगर आज का दिन अच्छा था तो उसके लिए शुक्रिया कहिए, और अगर थोड़ा मुश्किल रहा तो याद रखिए हर नया दिन नई शुरुआत लेकर आता है। जिंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन हमें कुछ नया जरूर सिखा जाता है। इसीलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। फिलहाल के लिए लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी शो में ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

जितनी गर्मी बढ़ती है उसके साथ लाइट बिल भी हमारा बढ़ता ही है, क्योंकि लाइट ज्यादा यूज होती है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। सिटी अपडेट में इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि एक दो महीने के अंदर अपने शहर में लाइट्स बहुत ज्यादा यूज हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में अपने शहर में 50 लाख यूनिट बिजली यूज हुई थी और वही अप्रैल में तकरीबन 6 लाख के ऊपर ये नंबरिंग पहुंच गई थी। यानी कि एक महीने में 1% बढ़ोतरी हो गई है। इस प्रत्येक घर अपना कूलर किंवा एसी किंवा फैन 24 तास चालू असतात, कारण की उन्हाळा इतका आहे तर माणूस करणार तर काय। यामुळे ही वीज वाढ सध्या झालेली आहे आणि आता तर मे महिन्यात चालू आहे आणि इस मे महिने में अभी ऐसी गर्मी है तो इसका रिपोर्ट तो मे के एंड में आएगा, लेकिन अप्रैल में 60 लाख यूनिट यूज हुई थी तो मे महीने में कितनी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जैसे गर्मी बढ़ती है तो लाइट का बिल भी बढ़ता है क्योंकि बिजली ज्यादा यूज होती है। स्टे ट्यून।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे,

0: मुझे सुन।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM नाइट। नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
3: तुम्ही ऐकत आहात MGM